0: मेलागी माइलका लागि छ सुनसरी गाउँपालिका योनि मस्तक जरुरी सूचना झुमो पेला खेमृदे गरम ओबोतिरी जेऊ पेला सुनो फुरी कटास ओचुगुरी जेऊ आउ पेला क वन जंगल ल भे लागिने मस्त ज सम्भावना चाहिए आउ ये गिनी प्राकृतिक सम्पदा र तखेप्त जस खेमनादे वातावरण मिले ने लखेप्ता असर किने री उमूल र थाउने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्त ज तानागे भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकिने सुनो माखार नामले ल भे लागिने सज जिमी गिमी लापरवाही सुनो चाउस खेलगेमा दुख जिन्दगी को ठेल मेला की नाते जन धनी ने खेपा छिपी ताऊ दुबो होकाई
1: ये छोटाला बल्ल मेला की नेपुरा रंगे नौ पुरा ले चौसो खेल गिरी
0: वन जंगल सर मेरा आज मेरी बानी एमएल एम ओ छोटाला ली उसे पर फोटो डाले पार बजे रहते
1: सलाई लाइटर सियाला मे सचंगे चीज डाले जा बंजा रो या मा देने पोला गिने या इतो चीज रो रही थी वन जंगल यार गिरवा
0: पिकनिक वन भोज बाको

0: 和张书清的妹妹张书水的一个亲妈爷，文章高头我所参与的一个班里头，除了自己的屋里个人，古巴人给拿便宜。
1: 南昌南路里有王富婆的双胞胎，他们在玻璃后面，他们在我们部门里面，表示他早上给你。
0: 给出参与了可怜了，早起玻璃也回来的，昨天该给上你给来住，阿婆来这里玻璃给俺爷了，给上你给拿来耶，我们来又给拿一耶。
1: 文章高头做的是有钱巴里了。Balinali, Kuchula Juli, Yakra Sotansu Chimi, Nate Samsu Sayaki Kalaya.
0: Bonjangola Melaki Gimaye, Neola Gikini, Parsona Karnanda, Midi Devonai, Sanos and Nakisaye.
1: But as Utilizu Velato, Gizinki Kotola, Nakis Sangini, Enokimachini, Nate Samsu Kisaya.
0: Nelaki Nimitae, Gimonai Gibosi, Sono Orule Mani Gibosaya.
1: Gives of Tamla Poyala, Nelaki Gisankini, Gives of Aura Karele, Porhori Karele, Sosa.सुनसरी गांव पालिका गांव कार्यपालिका ये उन्हें कार्यालय लो खबर दी रही है
0: अनुरोध सुनसरी गांव पालिका वन वातावरण सभा विपद व्यवस्थापन समिति कोबांग रोलपा